मानस बपड़ा क्या सालाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थानु दिया सुखदाता निखुट ना कभी जाए आनंद भया सुख सहज समान सतगुर मेल मिलाई मानु नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा। गुरु रूप साध समझियो एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नु सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां विच जीवना, लोभ विच जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा है। जगत दे पूर्ण शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दिच जीवे, लोभ दिच नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन है। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ये तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करने, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार विच ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोख है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा कीती है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने, जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नूं मुसलमान कहा। महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म दी शाखा एक नहीं है। ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे वगदा है। जैसे मैं देखा अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हुण ते खैर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, ते जद निकल दिए उत्थे इस दियां 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगो जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया दी शकल अगे चल के बनती है, छोटियां छोटियां धारावां। हिंदू धर्म दी सनातन मत दी धारा एक नहीं है, ये बहुत सारियां धारावां दे च बगदा है और अगे जाके कट्ठा भी नहीं आना। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इना देच और सन्यासियां दे कई कई रूप, बैरागियां दे कई कई रूप, ब्रह्मचारियां दियां कई कई शाखां, फिर जितने इष्ट ने उतनिया धारावां ने, किसे दा इष्ट शिव, किसे दा श्री राम, किसे दे श्री कृष्ण। ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत, लेखक, विद्वान महात्मा तुलसी, जैसे मथुरा देच आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नूं असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम भी पहले आई सी। गुरु रामदास जी दी नगरी है, अयोध्या राम दी नगरी है, बनास शिवां दी नगरी है, मथुरा कृष्ण दी नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हां नूं कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारकाधीश मंदिर विच। सारियां ने डंडौत कीती, तुलसी ने नहीं कीती, तुलसी ने नहीं की थी। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं, भगती का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं, तुसी बहुत बड़े विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की थी, मत्था नहीं टेकया, तो हुण जो कुछ तुलसी कहंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं तुहाडे सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छबी है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है।
ਉਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਣੀ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤੋ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਧਨ ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨਸ਼ਦਾਨ ਹੋ, ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੇ ਨੇ। ਨਿਆਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ, ਮੀਮਾਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਮਨੇ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੜਾਦ, ਇਹ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ? ਦਰਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੋ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ, ਕਪਲ,
कणाद, पतंजलि, जैमिनी और ऋषि वेद व्यास इना छे गुरुआ का गुरु ओ एक है, गुर गुर एको। इथों दावे नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने ज्ञान सारा परमात्मा तो आंदा, तो फिर आदि गुरु भी परमात्मा ही है। परम पर पार ब्रह्म परमेसर नानक गुरु मिलिया सोई जी। अज तक किसे एक भी ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं आख्या ये ज्ञान मैं अपने आप प्राप्त किया है, सब कहिंदे प्रभु तो मिले है, परमात्मा तो मिले है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझे हो हम। हुण गुरु नानक देव जी महाराज इसे ही वाक दे च मंग करदे ने, बाबा जय घर कीरत करते कीरत होए। जिस घर देच कीर्ति चल रही है, जिस घर देच सत्संग चल रहा है, हे करते तेरी गल चल रही है, तेरियां बातां चल रही ने, तेरा ज्ञान चल रहा है, तेरी ध्यान साधना चल रही है, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। उस घर देच मैनू रख, मैनू ओ थां बख्श जिथे तेरी कीर्ति हो रही है, जिथे तेरा जस हो रहा है, जिथे तेरी महिमा हो रही है, ताकि मैं सुना सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नेता। तो मैं अर्ज कर रहा से एको ही उम्मत नो जन्म देता है गुरु नानक ने, सिख सिख केवल सिख है, एको ही उम्मत नो जन्म देता है मुहम्मद साहब ने, मुसलमान केवल मुसलमान, एको ही उम्मत नो जन्म देता है महात्मा बुद्ध ने, भिक्षु भिक्षु। एक तरह की उम्मत सनातन मत विच नहीं है, कोई आर्या समाजी ने, कोई देव समाजी ने, कोई गैर सनातनी ने, फिर इन्हां दियां शाख साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने। अगर असल देखना होवे ते जद इन्हां दियां शाइयां निकलदियां ने कुंभ दे च, उदों पता चलदा कितने फिरके ने, अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे, झगड़ा भी हो जांदा। इस कुंभ तो पहले कुंभ दे च 42 साधु मारे गए सन, नांगे साधुआं दी ते निरंजनी अखाड़े दी जंग हो गई सी, लड़ पए सी। एक ने कहा पहले असी इनान करना है, दूजे ने कहा पहले असी करना है, कुंभ लड़ पए। हैरानगी दी गल, कुंभ दे दिन पाप धोण वास्ते आए सन, उत्थे ही पाप कर बैठे, 42 बंदे कतल हो गए। जन्मा जन्मांतरां दे पाप धोण आए सन, सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते, सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते। एक शाखा नहीं है, अनंत धारावां ने, ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां दे च पहाड़ तो निकलदा फिर मिलदियां भी नहीं आपस, अलग अलग ही चलदियां। तो मैं अर्ज कर रहा सी मनुख दियां लोड़ां ने, और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता। लख यतन करे मैनू नहीं चाहिदा पानी, पर शरीर मंगेगा, लोड़ है। लख मैं उच्ची आवाज नाल आखा मैनू नहीं चाहिदा भोजन, पर शरीर नू भुख लगेगी, मंगेगा। शरीर नू गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भुख लगती है, प्यास लगती है। कुछ ते वड़ियां वड़ियां शरीर दियां लोड़ां ने, कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां ने। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंदा लोड़ां दा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं है।

धन माया मेरे अगों आई तो चूंकि त्यागी साधुआं दा आश्रम सी परोपकारियां दा सेवा भाव जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे वंडनी भूदान तो ओ माया मैं विनोबा भावे दे चौले च पा दिते एकदम सुट दिती मिट्टी मैं कह इस तरह क्यों इन्नी नफर मिट्टी आई है मैं कह मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं मिट्टी नाल ते तुहानू हथ भी धोने पैंदे मैं देखदा मिट्टी नू हथ लांदे हो कि नहीं ते जे धन भी मिट्टी है तो की हर्ज है की हर्ज है मैनू कहन लगे मनुखता ने मिट्टी नू अजे इतनी अहमियत नहीं दिती मिट्टी तो बने हुए कागज नू इस करंसी नू बड़ी अहमियत दे दिती है इहदे च अहमियत छुपी हुई है बड़ी ए किधरे लोभ ना पैदा कर देवे इस वास्ते सुनते मैनू अजे तक याद है पर लोड़ां दा मनुख त्याग नहीं कर सकता लोड़ां हैं मैं लख कह दिया नहीं चाहिए मैनू पानी मेरी प्यास आवाज मारेगी पानी चाहिए चाहिए मैं लख ठोकर मार देवा भोजन दे थाल नो मेरी भुख उच्ची आवाज नाल मंगेगी भोजन चाहिए भोजन चाहिए और इस तरीके दिया होर सैकड़े लोड़ां फिर लोड़ां नू पूरा करन दे तीन साधन ने पहला किरत करनी मेहनत करनी मेहनत करके अपनी लोड़ां दी पूर्ति करनी ते जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदा उहनू कहिंदे ने किरते दूसरा मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी क्योंकि अज दा वाक इस तरह दा आया है ते मैं अर्ज करा अछूता जिहा वाक है किस हो जाची किस साल जाचण मंगण तो गल चलती अज का हुक्मनामा इस तरह का इसने ही ख्याल दिते ने मैनु अज का वाक ही ऐसा है लोड़ां दी पूर्ति करन दा पहला ढंग है किरत करनी मेहनत करनी उन्हां नू कहा जांदा है किरती दूजा ढंग बड़ा व्यापक पद्धर ते सारी दुनिया दे चे मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने तो इस नाल मंगतियां दा जन्म होया भिखारियां दा जन्म होया और धार्मिक जगत दे च भी मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है तो महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत नू कहा भिक्षो भिक्षो भिक्षा मंग के गुजारा करना इस वास्ते मैं कई दफा कहा कि महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर दा धर्म ते इस तरह दे होर त्यागियां दा धर्म व्यक्तिगत धर्म है प्रभु नाल जुड़न दा वसीला है ये व्यक्तिगत धर्म है समूहक नहीं सारियां दा नहीं कारण अगर सारे भिक्षु बन जान चलो मन लेंदे हां सारे महात्मा बुद्ध की गल मन लैन ते सारे भिक्षु बन जान फिर कौन देगा देण वाला कौन होगा किसने देना सारे ते मंगते सारे ते मंगण वाले फिर कौन देगा तो सारिया का धर्म नहीं है अगर सारे ग्रस्त दे त्यागी बन जान तो 300 साल तो बाद बंदा ते जमीन ते एक भी नहीं लभेगा गल खत्म हो जाएगा मनुखता तो खाली हो जाएगी जमीन अगर सारे ग्रस्त का त्याग कर देन महात्मा बुद्ध का धर्म अजीम ने महान ने बड़े विचारक ने उन्हों का धर्म व्यक्तिगत धर्म है समूहक धर्म नहीं है सारिया का धर्म नहीं है स्वामी महावीर का व्यक्तिगत धर्म है समूहक धर्म नहीं है सारे ग्रस्त का त्याग कर देन थोड़े दिनों तो बाद ही जमीन

करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहा ताए ताए कृपण श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा

0: अनुख जीवन के लक्ष्य समझे बिना व्यर्थ आया, एदा जन्म व्यर्थ गया, एदा संसार ते आमना व्यर्थ, एदा जीवना व्यर्थ। ये लक्ष्य का नहीं पता, ये लक्ष्य दे नहीं समझ। हां जी,
1: अनको साग सिगार बहु पड़ता जो मृतक उड़ाया।
0: जितना बाकी साजो समान है,
1: जो कुछ भी है,
0: तो जितना अपना तन सवार है, महाराज कहते ने सब कुछ मुर्दे का श्रृंगार है और कुछ भी नहीं। मुर्दे का श्रृंगार शायद आपनू पता होवे, यूरोप दे देशां विच ते कुछ एशिया दे देशां विच एक बहुत वड्डा धंधा है मुर्दियां नू सिंगारना। बड़ा वड्डा धंधा है। क्यों? चाइनीज लोग, कोरिया, थाईलैंड दे लोग मुर्दे नू 10-15 दिन 20 दिन घर विच रखदे हैं। उसनू बहुत चंगा समझिया जाता है जिहड़ा जितने ज्यादा दिन तक मुर्दे नू घर विच रखे। सब तो वड्डा खर्चा भी मरण पे है। यूरोप के देशां दे अंतम संस्कार की बकायदा डेट गवर्नमेंट वालों मिलती है, हॉस्पिटल तो मिलती है। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, इतने दिन तक वो मुर्दा घर विच रहिंदा है। अंतिम संस्कार वाले दिन घर विच लाया जांदा है, सारे दर्शन कर दिन फिर ले जांदे। थाईलैंड विच एक दो समागम मैनू देखण नू मिले, क्योंकि एक पतवंता सिंह उन्हां दा दोस्त चलाना कर गया सी। तो मैं उन्हों कहा, मैं कि थाईलैंड वासियां दी मैं अंतम क्रिया देखनी है, एक ही कर देना। ये लोग की कर देने? मैनू कहन लगे, मस्कीन जी अज अंतम किरिया नहीं आनी, उते भी 5 दिन मुर्दा घर विच रहेगा, ते 20-25 दिन घर विच बैठक चलती है सवेरे ते शाम। बिरादरी दे बंदे आउंदे ने, फिर 20-25 दिन उन्हां नूं सवेरे शाम अच्छे तो अच्छा पकवान खिलाया जांदा है, जो ब्याह शादियां च भी नहीं आउंदा। इस वास्ते मरण ते खर्च ज्यादा है। और उन्हां दे पुरोहित पंडित कुछ पढ़दे रहिंदे ने, कुछ गाउंदे रहिंदे ने, लोकी आउंदे ने, घंटा अद्धा घंटा बैठदे ने, चले जांदे ने, खांदे ने, पींदे ने, चले जांदे। मैं देखना है जिथे गए वो कम से कम 11 दिन हो गए सन घर विच मुर्दे नू रखिया, पर जब मैं देखिया तो दंग रह गया। इंज लगता सी जिवें सुता पिया, ना कोई चेहरा कुमलाया होया, ना कोई हाथ पैर कुमलाए होया। मैं कह हद हो गई, 11 दिन हो गए ने गुजरिया, ये तो इंज लगता जिवें सुता पिया। एक अजकल धंधा है, ऐसे कैमिकल्स मुर्दे के अंदर पा दिते जाते हैं, इस ढंग का संवार दिता जाता है, श्रृंगार दिता जाता है, इंज लगता जिवें सुता पिया। यह घटना भी याद आ गई है, कह गया सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह हुण ते नहीं रहे, हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, इन्हां दे रिश्तेदार कोई बेगोवाल रहिंदे सन। ओह नौजवान किधरे जर्मनी कम करदा सी, हादसे चलाना कर गया, ते 3 महीनिया बाद लाश आई इत्थे। उन्हां दे नजदास इत्थे कथा कर रहा सी, फिर मैनू बुजुर्गवार सिंह साहब कहन लगे चलना है। मैं कि ठीक है चलने, पर जब मैं उन्हां कोल सुनिया 3 महीनिया बाद लाश आई है,

दंग रह गई कि लैणे दी फेराइन नानका दोही खटिए। कल तक लहणा गुरु नानक दी परिक्रमा करदा सी, अज गुरु नानक लहणे दी परिक्रमा कर रहे ने। कल तक लहणा गुरु नानक दे कदमां ते अपना मस्तक रखदा सी, अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लहणे दे कदमां ते रख दिता है। दुनिया देख के दंग रह गई। दूजा दीवा जल पिया, जोत तो जोत जली, चानना वंडन लई, रोशनी वंडन लई, आपदी दृष्टि अमृतमई, जैसे कि भट्ट कहिंदे ने, दृष्ट धरत तम हरन दहन अगपाप प्रनासन। मेर भरी दृष्ट दे नाल आप जिसनु वेख लैन, उदे अंतिशकरण तो पाप निकल जांदे सन। इस तरह दी बरकतां दे आप मालिक बने। आप करतारपुर तो खंडूर साहब विच आ गए। कनौज दे मैदान तो शेर शाह सूरी तो हार खा के हुमायूं असफान दी तरफ भज रहा सी, जा रहा सी। रस्ते च कोई फकीर मिले, पीर मिले, उदी दुआ ले लेंदा सी, उदे कोल आशीर्वाद लेने दी कोशिश करदा सी कि मैं ए हारी होई बाजी फिर जित जावा। किसे तरीके नाल ए तखत जो मेरे कोल शेर शाह सूरी ने खो लिया है फिर प्राप्त होवे। ता रस्ते दिच किसे ने कह दिता, गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तुसी उना तो असीस लो, उना तो आशीर्वाद लो। आप ब्यास नू पार करके जद पहुंचे खंडूर साहब, जगमगां दी जोत दे दर्शन कीते, पर सतगुर समाधि दे सन। उच्चा उठ के तक के हुमायूं दी तरफ नहीं देखिया। हुमायूं नू हैरानगी होई क्योंकि पीर फकीर सन्मान करदे रहे सन, आदर करदे रहे सन, बादशाह रह चुके असी, तो बादशाह दा अपना हंकार। मयान चो तलवार कढ ली उसने गुस्से चाके। सतगुरु दे नेत्र खुले, कहन लगे जिथे तलवार चलनी चाहीदी सी तो उत्थे मैदान म्यान दे च रख के भज पे हैं, और जिथे म्यान दे च रखनी चाहीदी है उत्थे तू बाहर कढ रहे हैं। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं, कदमां ते झुकया, आखिया गुरुदेव पिता माफी, भुल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसनू उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नाश कराईदा है। बचन बड़े अगम्मी, फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नू कट के रख देंदी है, ते दूजे नू ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे और माफी मंगण लग पिया सी, भुल मंगण लग पिया सी, बापा मेरे कोल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरुमुखी लिपि दे प्रसार लई, गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इना अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दित्ती। आपने स्वयं बच्चियां नू पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ए परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके, और जगत उस बाणी नू पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजल होया, जिस दिच रब्बी ज्ञान नाजल होया। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दिच आपदी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आपदे लंगर दिच जो कुछ बनदा सी सत्ते ब्रह्मंडे दी वार दिच बकायदा उसदा जो है

रोटी तो नहीं जी सकता, बिना भोजन तो नहीं जी सकता। जमया जो रोटी तो है, पैदा जो रोटी तो है, बिना रोटी तो नहीं रह सकता। कबीर जैसे एक महान दार्शनिक संत नु भी बुलंद आवाज विच कहना पिया, भूखे भगत ना कीजे ये माला अपने लिए, ऐ प्रभु अपनी माला पकड़ मेरे कुल नहीं, भुखिया नहीं होता, भुखिया तेरा नाम नहीं जपिया, भूखे भगत न कीजे ये माला अपने ही लीजे। फिर कमाल कीता है एक शब्द दिते कबीर ने, ऐलानिया के है चार हस्तियां पूजन योग, धन धन पूजन योग केड़िया चार, तो जो गिनती कीती है ध्यान नाल सुन लेना। भगत कबीर, धन गोपाल धन गुरुदेव, हे गोपाल तू पूजन योग है, पूजन योग है, पर हे गुरु तू भी पूजन योग है, तेरा सदका गोपाल दा पता चलता, तेरे बोला तो गोपाल दी झलक मिलती। धन गोपाल धन गुरुदेव, तीसरा धन अनाद भूखे कवल टेक, धन है ए अन्न ए रोटी, जब तू पेट दे च पै जानी है ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगते, नहीं चंगे लगते। धन अनाद, धन है ए अन्न अनाज रोटी, धन अनाज भूखे कवल टेके, भूखा इंज खिड़ जाता है जिवें कमल दा फुल, ए भी पूजन योग है। जिथे रब नू बिठाया जिस सिंघासन ते कबीर ने, जिस सिंघासन ते गुरु नू बिठाया है, उत्थे ही रोटी नू बिठा रही है, उसे दो। ताई ते गुरु अमरदास जी महाराज ने संगत ते पंगत कठे कर दी बराबर न, सिमरन करके जे आनंद प्राप्त किया जा सकता, सेवा करके भी आनंद प्राप्त किया। गुर सेवा तपा सिर तप सार, सेवा दी भी अपनी महिमा, सिमरन दी भी अपनी महिमा, संगत दी भी अपनी महिमा, पंगत की भी अपनी महानता है। बशर्ते मनुख नु संगत विच बैठने का ढंग आवे, और बशर्ते पंगत दी सेवा करने का ढंग आवे। इंज नहीं एक चौर पिया करदा ते दूसरे ने हथों ले ली ते फिर उसने ओदे कोलों खो के ओदे सिर ते मारी, तेरा की हक, तू कौन हो, मैं करदा चौर, मैं ते करिश्मे देख के दंग रह जाने, सेवा पे करते। सावन लाला के मार्बल दा फर्श उदों धोवो जदों संगतां आंदियां ने, लत्तां बाहां सब दियां थोड़ा बेचारे चल देने, गिर देने, रोज गिर देने। मैं उन्हां नूं कहना रात नूं कर लिया करो, नहीं जद अमृत वेले आ उदों करनी है, दिखाण तो गिरदे ने लोग, कई दियां लत्तां टूटियां हुई मैं देखदा, कई दियां बाहां टूट गई, इन्हां दियां सेवा ये जो करदे ने, ते जे किसे दियां लत्तां ही टूटदियां ने बाहां ही टूटदियां तो सेवा आखोगे, किस तरह आखोगे सेवा। बेहोशी नाल सेवा हो रही है, बेहोशी नाल सिमरन हो रहे। धन अनाद भूखे कवल टेके, चौथा पूजन योग कौन तनता दे, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। पूजन योग है ओ संत जिने ए जाने है के रोटी धन है, गुरु धन है, प्रभु धन। जिसने इस असलियत नु जाने है ओ भी पूजन योग, ओ भी धनता दे योग है,
तो मैं फिर अर्ज करा, तन रोटी है बनिया रोटी।

ही जो है रह गए और अत्यंत वासना ग्रसे हुए मनुखा ने अपनी वासना नु होर उजागर करने लई उन्होंने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि धर्म की दुनिया च और समाज की दुनिया च यह ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय नु गुरु नानक देव जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है, अपने विचारां विच थां दित्ती है और इस दा जिक्र भी कीता है। ये तो ठीक है कि जन्म दी क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दिती है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनता है, तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है, इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तलांजली विच ले जाता है और यही बार बार दे जन्म ते मरण का कारण बनता है। शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जूना दे पाण दा कारण बनता है, जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मां तक। आप साफ फरमान कर देने हे काम नरक विश्राम बहु जौनी भरमावण है। इसकी मूल व्याख्या तो इंज बनती है, जब जन्म काम तो होया है, तो काम की अंश जीवन विच होगी, लाजमी होगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है, मां की रकत पिता बिन धारा। पातशाहिंद भी फरमान करते ने पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी। पिता का मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ये गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी इसकी संयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने जिसका नां है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नूं जोड़े है, तो इस पुतले विच मिट्टी है पानी है वह वेग भी है, मां का खून भी है पिता का बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम का वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नूं इस खून नूं असी काया विचों कढ नहीं सकते, तो जिथे उस बिंद नूं उस खून नूं इस काया विचों नहीं कट सकते तो काम नूं भी नहीं कट सकते, क्योंकि तिन्नां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा ढांचा बनया है, ये पुतला बनया है। पानी मैला माटी गोरी इस माटी

पुत्री जोरी बड़ा सुंदर ए पुतला बनिया। तो सतगुरुदेव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे, इस उपदेश दे चाहे काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने भुख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भुख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है जो शरीर विच नहीं समा सकती, वो अधिक वेग पर बलवाशना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया, काम सोचनी का हिस्सा बन गया। शरीर देश ते है ये मन देच भी हो गया, चिंतन देच आ गया, सोचनी देच आ गया, विचारां देच आ गया। ताही ते आज जितना साहित बाजार देच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे हैं, उस साहित देच काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध च लिख रही है। लाजमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उन्हां दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसे वक्त शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है बिचारे के आजा पर औरत सवार। भावे उन्हें अपने देश की गल की थी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है बिचारे के आजा पर औरत सवार। ये जो नावलिस्ट ने कहानीकार ने ये जो संत राश ने ये जो शायर ने दार्शनिक ने विचारक ने इन्हां दे विचारां विच इन्हां दी लेखनी विच इन्हां दी चित्रकारी विच इन्हां दी संगत राशी विच काम ही काम छाया है। मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गया है और इसे ही कहानियां शायरी दे आधार ते बनन वाली फिल्मां काम दी प्रदर्शित तस्वीर बन गई। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर्स, इश्तेहार, फिल्मां, मैगजीन, शायरी, संतराशी, तस्वीर सब काम दी नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिदा तो ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया और चारों पासे काम ही मनुख दे दिल दिमाग ते छा के रह गया। काम
एक ऐसा जज्बा अगर ये विचारां च आ जाए, सोचनी च आ जाए, चिंतन दे च आ जाए, तो काम ग्रसया मनुख राम दा चिंतन नहीं कर सकता, नाम दा सिमरन नहीं कर सकता। भगत रविदास जी महाराज फरमान कर देने, तुम कहियत हो जगते गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे, इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होया। प्रथम इस काम नू अर्थां दे रूप विच समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है, इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द पर चलत हो गया, काम लोभ काम अहंकार एक कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सके। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है, रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप दे ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंच दी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाने ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरे है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे वो चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मा, चाहे पत्थर दे ते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जायो, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचिया सी कि जमीन देते मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं,
जैसे कि खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दिया पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां हैरानगी है। खजुराहे नु देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है और छोटा जिया कस्बा लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है। एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बाहर दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदिर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे इस वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते ए काम ही छा गया, हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नूं इत्थे ही दुख तो के कहना पे है, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ये भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दे बह गया, काम दे दलदल दे फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनन वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैन किथे, कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने पर नामदेव किथे, चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिस डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं

0: संत नानक नारायण। हार गया वो जीवन दी बाजी जो काम आश्रित हो गया, जीत गया वो जीवन दी बाजी जो राम आश्रित हो गया। कामना राम दी करिए मनुख सदाचारी बन जांदा है, कामना वासना दी करिए दुराचारी बन जांदा है। और वासना दी कोई सीमा नहीं, कामना दा वेग वासना नू वधांदा है, वासना दा वेग कामना नू वधांदा है। और इस तरह जीवन दर जीवन जिंदगी काम आश्रित हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते त्रै लोक गवन, सिर्फ मनुखा तक ही ऐ वासना तेरी पहुंच नहीं, तू ते तीन लोकां दे छाई हुई है, पशुआं दे चैं, पंछियां दे चैं, मनुखां दे चैं, जिन्हां नूं असीं देवता कहिंदे आं, ये भी सही वासना करके भ्रष्ट होए। उन्हां दे अंदर भी कामना वासना दी ही चलदी रही। देवतियां दे सिरमौर देवते मने जांदे ने इंद्र, और ये असीम वासना करके काम करके भ्रष्ट होया। और वाकई काम वासना मनुख नु अंधा कर दे दिए, इतना अंधा हो गया कि भ्रष्ट होया है। एक वक्त दा सिरमौर संत गौतम ऋषि उसकी पत्नी अहिल्या थे, जो एक देवी दे समान सी, इसने उसनु वेसवा बनाया। जदके देवते दा कम है वेसवा नु देवी बना देना, पर एक ऐसा देवता वाकई काम देवते नु भी भ्रष्ट करके रख देंदा है, मनुखा नु भी भ्रष्ट कर देंदा है, पशु पक्षी ते इसी दलदल विच फसे हुए ने। बड़े बड़े जपीश्वर तपीश्वर लोभ दा ते त्याग कर गए, अहंकार नु भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देती, लेकिन रूप दा चिंतन अक्सर चलदा रहा, वासना मजबूर कर दी रही, रूप दा चिंतन चलदा रहा। कहानियां ने गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछड़ा भेजदा है, किधरे मेनका किधरे उर्वशी किधरे तप भंग आंदा है विश्वामित्र दा, किधरे भ्रष्ट आंदे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना दे दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंद्रनाथ। दरअसल कोई स्वर्ग तो किसे अपछरा नूं नहीं भेजदा, वासना कल्पना दा स्वर्ग खड़ा कर देंदी है, कल्पनावां दियां हूरां खड़ियां कर देंदी है, कल्पना दियां अपछरावां खड़ियां कर देंदी है। बैठा सी राम दे चिंतन दे चिंतन चल पिया होरां दा, बैठा सी प्रभु सिमरन दे सिमरन चल पिया अपछरां दा, कल्पना दा स्वर्ग। और जद कल्पना दे स्वर्ग दे अपछरा होवे होरां आवन, तो वास्तविक जगत जो हकीकत दा जगत है इस दे इस ऋषि नूं भ्रष्ट होंदे आ देर नहीं लगेगी, जो कल्पना सी साकार हो जाती है तो भ्रष्ट होए विश्वामित्र, भ्रष्ट होए श्रृंगी ऋषि, भ्रष्ट होए ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ। ये आम साधारण मनुख नहीं ने, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਪੰਕਜ ਫਾਤੇ ਪੰ ਮਹਾਮਦ ਗੁੰਫਿਆ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਏ ਬਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ। ਪੰਕਜ, ਪੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ, ਪੰਕਜ ਪੰਕ ਤੋਂ ਜਮਿਆ, ਪੰਕਜ ਪੰਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਿਆ, ਕਮਲ ਪਦਮ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਹੱਪਣ ਮਹਿਕ ਖੇੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਧਨ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਗਗਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰਾਜਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਉਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ, ਅਗਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਪੁਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। पानी कटे कमल थल्ले गया। अचानक किधरे जोर दी बारिश हुई और सरोवर विच हड़ दा पानी आ गया, बहुत वेग नाल आया, बड़ी तेजी नाल सरोवर उपर उठे है। कमल संभाल नहीं सके अपने आप नूं, डूब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डुबिया, जिस चिक्कड़ विच इसदियां जड़ां सन उसे चिक्कड़ विच खुब के रह गया। मनुख पैदा होया काम तो चिक्कड़ तो, मनुखी जीवन दा कमल चिक्कड़ तो पैदा होया, काम तो पैदा होया। पंकज फाते पंग महामद गुंफिया। ये जो इतना सुंदर कमल दा फुल है इते पंक दी देन है, चिक्कड़ दी देन है। ये मनुखी जन्म, ये मनुखी काया, इतनी सुंदर काया, इते काम वेग दी देन है। इते जमे है चिक्कड़ तो, पिता दा चिक्कड़ मां दा चिक्कड़, पिता दी वासना मां दी वासना, इते उस तो जमे है, इते चिक्कड़ तो पैदा होया है। पैदा तो चिक्कड़ तो होया, घर विच सुख वधे, आराम वधे, प्रभु दा सिमरन चलिया, उपर उठिया, आसमानां नूं छूण दी लालसा, गगन नूं सजदा करन दी लालसा, लेकिन पानी घटिया, थल्ले आया, दुख और पदार्थां दी कमी उलझना कुछ खेड़े च फर्क पांदियां ने, कुछ गिरांदियां ने। अचानक किधरे हड़ दा पानी, किधरे किसे दरिया चो वाड़ा निकले है, उसने रुख सरोवर दी तरफ कर लिया, लबालब अचानक अचनचेत सरोवर नु भर दिता है। कई दफा अचानक धन संपदा दे अंबार मनुख दे घर विच लग जांदे, हड़ दी तरह, मानो किसे दरिया दा वेग सरोवर दी तरफ हो गया है, मानो बरखा दे हड़ दा जल सरोवर दी तरफ हो गया है। किसे किसे घर विच, किसे किसे मनुखी जिंदगी ते धन ते संपदा दी बारिश ही हो जांदी है, जिवें सरोवर विच कोई दरिया पै गया है। इस तरह पदार्थ आ गए ने, इस तरह धन संपदा आ गई है। अचानक मिले हुए इस धन संपदा ते पदार्थां दे वेग नूं झल नहीं सकया, ठल नहीं सकया, डूब गया। पहले पदार्थां च डुबया, पहले कमल पानी च डुबया, फिर जिस चिक्कड़ विच इसदियां जड़ां सन, जिस चिक्कड़ चों पैदा होया, उसी चिक्कड़ विच फस के रह गया। फिर ते अत्यंत कामी हो गया। जद सुनदे हां किसे नवाब दियां 500 बेगमां, किसे राजे दियां 400 राणियां, किसे शेख दियां 100 बेगमां, हैरानगी, क्या जिंदगी इसे लई, चिक्कड़ तो जमया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐ कमल, तू अपनी महक भूल गया, अपना स्वप्न भूल गया, अपना खेड़ा भूल गया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਇਸ ਹੜ ਨੂੰ। ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਵਧਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਵਧੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵਧੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਰਤੁਲ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਮਨਾ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਕਾਮਨਾ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਕਾਮਨਾ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਏ, ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਏ, ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਮਨੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਰੁਕਦੀ ਆ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ, ਤੋ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮਦੇਵ। ਇੱਕ ਕਾਮਦੇਵ, ਇੱਕ ਕਾਮਣੀ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਣ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ ਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਿਲਣ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਮਦੇਵ। ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਣੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਣੀ ਇਸ ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਚਮਕੇ, ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਸਤਕ ਉਸ ਦਿਨ ਚਮਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਸਦੇ ਮਕਸਦ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚਮਕੇ। ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ ਤੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇਵ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਲੇ ਕਣਕ ਕਾਮਨੀ, ਛਲਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਨੀ ਤੋਂ, ਕਣਕ ਤੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਹਿ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਣੀ ਚਮਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਮ ਮਣੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਮਦੇਵ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਨ ਅਗਰ ਕਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸੰਤ, ਭਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ
1: धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार।
0: इस दौर दे इस कामी युग दे छम कईयत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। पुत ते जिन भूत है ते भी जिन भूत है। कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है। कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे। क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके। दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे। पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूतां नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नु काबू करना औखा सी अजोकी औलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादां नु मार रहे ने तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया सिर्फ काममयी होके रह गया। पातशाह कहिंदे ने रन्ना होइयां बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है फिर विखाण ले निकल दी है। रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, इसके अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार की तलाश है, इसकी खोज यही है, कोई नग्न शरीर देखने न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दे जाके किसी नग्न स्त्री दे नृत्य नु वेखे, और अजे इतनी धनाडा दी महफिल भी इसनों नसीब ना होवे जिथे अर्ध नग्न शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नग्न शरीर जो फिल्मां दे चने, तस्वीरां दे चने, मूर्तियां दे चने, ओ वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रही ने, फैश नावल जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होकर रह गया है, वासना दा बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल नू दूषित कीता है। इस वासना नू प्रार्थना किवें बनाइए? प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे, कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक दे च भी कहंदे ने, अल्प सुख अवित चंचल, ऊंच नीच समावणे, बहुत थोड़ा जिहा सुख, और तू ऐसा चंचल कर देना है, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख दे फस के रह जांदा है, बचाओ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने,

तान कर धर्म वधे नित। रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए, उस सच नूं सत नूं रटन करिए, उस विच मन जोड़िए, धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है। और परोपकार कीते हां, दान पुन कीते हां, धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है, उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे ते टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान, ढह ना जान, तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन, तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं, किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल, क्षमा दे सहारे, खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है, उच्चा हुंदा है, उच्चा हुंदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मात्र क्रोध कर दिया, धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन, पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दी, कितने दिनों की साधना, कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है, बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन, छोटी जी अग्नि, कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है, एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को, मुर्दा, रोंदी हुई, चीखती हुई। डॉक्टर भी हैरान है, जब मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब, जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है, रोंदी हुई, बिलखदी हुई, ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये ते ठीक है, पर मैं इस वास्ते ले आई है, क्यों मरया है, किवें मरया है, मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है, अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है, मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया, कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी, मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है, खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दूध पिला रही सी, तेरी मनोदशा की सी, तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहती है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी, बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी, ये बच्चा विचकार रोन लग पया, मैं इसनु दूध पिलाण लग पई,
पर गाली गलौज साड़ी चल रही सी। मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा, ऐ बीवी, तू इस बच्चे नु दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली, क्रोध करके तेरिया शरीर दिया ग्रंथियां ने जहर उबलनी शुरू की थी। उना गंडा चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दूध विच लीन हुई। तो बच्चे नू जहरीला दूध पिलाया, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नू जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे।

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर जिन्हा दी वासना अतृप्त रह गई है जिन्हा दी कामना अतृप्त रह गई है जिन्हा दी तृष्णा अतृप्त रह गई है जिन्हा दियां इच्छावां अतृप्त रह गई ने जिन्हा दियां कामनावां अतृप्त रह गई ने तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनती है, अतृप्त वासना गिले बनती है, अतृप्त वासना शिकवे बनती है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देती है और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करता है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तं करोत जथा मरकटे, तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासं

धर्मनो व्यापार करता है, करता है धर्म, फिर कुछ लेन दिया कामनावां नु मुखर लग के उसनु बेचदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा बड़ा सुंदर एक वाक, खत्रिया ता धर्म छोड़िया मलेच भाख्या गही, श्रेष्ट सब एक वरन होई धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इक्को वरन हो गई है, धर्म गति नहीं कर रहा। जिस वरन दे सारी मनुखता आ गई है, इस वरन नाल धर्म नहीं चलता, धर्म की गत रही। अगर मिथ नू लईए ते मनु सिमरती दी वंड नू लईए, उन्हें चार वर्णा दी वंड कीती है, खत्री ब्राह्मण शूद वैस। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही, सारी सृष्टि इक्को वर्ण हो गई, धर्म दी गति रुक गई, धर्म नहीं चल रहा। सारी सृष्टि केड़े वर्ण विच आ गई कि धर्म दा चलना औखा हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मण नाल धर्म चलता है, अगर कोई वाकई ब्राह्मण है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म दा चिंतन करता है, ब्रह्म विच लीन रहिंदा है, ब्रह्म दी सोचदा है, ब्रह्म नु विचारदा है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है क्योंकि ब्रह्म दा चिंतन करदा है, ब्रह्म प्राप्त होवे ऐसा सोचदा है, ब्रह्म नाल जुड़ा ध्यान जोड़दा है, ब्रह्म बारे सोचदा है विचारदा है। तो ये ते ब्राह्मण होया, ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है। ब्राह्मण किसे वेशभूषा दा नाम नहीं, ब्राह्मण किसे जात दा नाम नहीं, ब्राह्मण एक मनोवृत्ति। जो ब्रह्म दा चिंतन करे, ब्रह्म नु सोचे, ब्रह्म नु विचारे, ब्रह्म दी प्राप्ति दी कोशिश करे, ब्रह्म दे चलीन होण दी कोशिश करे, ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण नाल ते धर्म चलदा है। कदी कदाई कोई लखां इस तरह दा पुरुष जिन्हों देख के कह सकिए ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इति ब्रह्म विचलीन है, इति ब्रह्म दा चिंतन कर रहे है। तो ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है, खत्री नाल भी धर्म चलदा है। खत्री कौन? खत्री सो जो कर्मा का सूर, जिस दे स्वभाव दे सूरवीरता है, जिस दे विचारां दे सूरवीरता है, जिदी सोचनी दे सूरवीरता है, जिस दा खून अन्याय वेख के खौलन लग पैंदा है, जिस दा खून मजलूम दा खून बन जांदा है, वो अपना खून मजलूम नु देंदा है, मजलूम दी रक्षा लई जिसदा खून उछलदा है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। कौन है सूरवीर? जो दीन दी खातर लड़ता है, दीन कमजोर। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मनगारे, दीन गरीब निमाणा निताणा। जो दीन दी बां पकड़ लवे, इति परमात्मा वाला गुण है, इति ईश्वरी स्वभाव है, इति स्वाई ईश्वरी है। दीन दे पक्ष देच खड़ा हो जाए, ताकतवर दे पक्ष देच ते सारी दुनिया खड़ा

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दीवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग देच चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पादशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

राजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणा दा सागर है, मनुख औगुणा दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे औगुण भी गिणने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगण ने अनंत औगण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नू इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा दे जमना है। सतगुर मोह तो आरंभ कर देने, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नु कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनु थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा आज हो जाए, कल मिटदा आज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं होता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध ते टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता ते टूटेगा, संबंध ते टूटेगा। बस इसी टूटने का दुख है, इसी टूटने का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छूटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनु पकड़े है शायद वो ही मुर्दा हो जाए, वो ही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बढ़ जाता है, और जितना मोह बढ़ जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह बढ़ जाता है, उतनी ही पकड़ बढ़ जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दिया अखां हर पासे लभ दियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
बीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसते गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हास्यां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली,

0: तेरा नहीं, रेजा रेजा हो जाए टूट के,
1: तामी कोई दुख नहीं, तामी कोई संताप नहीं। संताप मोह दुख ये सारे उत्थे इकट्ठे हो जाते ने जिथे मेरे भी मोर लगती है। मेरा घर, मेरी कुल, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी धन संपदा, तो जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। दरअसल मनुख ने मेरे भी मोर मिथ्या ते लाई है। ए मेरे भी मोर सच ते नहीं ला सकया। वाकई जिसनों कह सकता है कि प्रभु मेरा है, ये परमात्मा मेरा है, और वो मेरा ऐसा है कि सारी कायनात भी उसने वाखे मेरा है मेरा है, तामी वो बददा नहीं घटदा नहीं, सब दे हिस्से यकसा आंदा है, इको जी आंदा है। लेकिन मोह एक ऐसा पर्दा, मेरा एक ऐसा अज्ञान, जिस कारण करके मिथ्या नो ते गल ना लांदा है, सच तो कोसों दूर भजदा है, और इस तरह जिंदगी मोह दे दलदल विच फस के रह जांदी है, मोह दे खूह विच डुब के रह जांदी है। और ए मेरे दा विस्तार सिर्फ मनुखां तक ही नहीं कि मेरा भरा, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अगां चल के ए मोह संपदा ते हो जांदा है, धन ते हो जांदा है। मौजूदा दौर विच कुछ मनुखां ते विश्वास घटदा जा रहा है, मनुख दी मनुख नाल पकड़ घटती जा रही है, मनुख सियाणा हुंदा जा रहा है, चंचल हुंदा जा रहा है, बौद्धिक हुंदा जा रहा है, और जितना बौद्धिक होता जा रहा है मनुख की पकड़ मनुख नाल घट के मनुख की पकड़ धन संपदा नाल ज्यादा हो गई है। पुत्र धोखा दे सकता है, भरा मुंह फेर सकता है, लेकिन धन धोखा नहीं दे सकता, मुंह नहीं फेर सकता। जैसे इसनु वरतांगे वरत सकते हैं, पर जैसे पुत्र नु वरतना चाहिए नहीं बच सकते। जैसे पति नू आखी है या पत्नी नू कुछ कही है, लाजमी नहीं कि दोवें एक दूसरे की मनन। किसी थां ते नौकर भी इनकारी हो सकता है। तो इस सदी विच मनुख दा मोह धन नाल बहुत ज्यादा हो गया है, पदार्थां नाल ज्यादा हो गया है, और सहजे सहजे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं पदार्थ की खातर, धन की खातर, संपदा की खातर भरा कुर्बान किया जा सकता है, मां बाप छोड़े जा सकते हैं, पुत्र तो भी मुंह मोड़िया जा सकता है, और पत्नी ते पति दे विचकार दियां तलखियां पैदा हो सकती हैं, खलीज पैदा हो सकती है, दीवारां खड़ियां हो सकती हैं, और जद भी इन्हां रिश्तियां विच दरार देखो, दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती विच कारण धन होवेगा। धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश देखते धन दी पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन की पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां की पूजा नहीं करता, पिता की पूजा नहीं करता, पुत्रां की पूजा नहीं करता, पत्नी की पूजा नहीं करता, पति की पूजा नहीं करती पत्नी, लेकिन सारे मिलके धन की पूजा। तो अचेतन मन विच धन की पकड़ बहुत ज्यादा हो गई। और मूल कारण धन जैसा वर्ती है धन ना नहीं करता, धन जिथे रखी है और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। तो इस सदी देखते ये पगड़ शिखर पाते है, बड़ी प्रबल है, इस तो थले है परिवार की पकड़, कुल की पकड़, मान मर्यादा की पकड़ और फिर अपने तन की पकड़, अपने रूप की पकड़, अपने जोबन की पकड़। मोह का एक बहुत वड्डा विस्तार है और ऐसा जापदा है जैसे मोह नू नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नू भी नापना बड़ा औखा है। तदी ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तू बहुत बलवान है, हे मोह तू बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारियां ते पाई हुई है, तू सारियां नू अपनी जाल विच फसा के रख्या है। मोह नू घूमण घेड़ी भी कहिंदे ने, सियाने लोग जानते ने, खास करके दरियावां दे कंडे ते रहण वाले, जिथे पानी घूम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनू भरन लई दौड़दा है और जैसे उस खड्डे नू पानी भरन लई दौड़दा है पानी दा घेरा बन जांदा है, वह घूमण लग पैंदा है, उसे नू कहिंदे ने घूमण घेरी। सियाने तैराक भी जानते ने, अगर कोई उस घूमण घेरी च फस गया है निकल नहीं सकता। हां उदो निकलता है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते हैं। जीव का मनुख जितना संघर्ष करता है निकलण का, उतने ही उस घेरी च फसता है, उतने ही डुबदा है, उतने ही गोते खांदा है और जितना संघर्ष करता है उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रीचों निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है एक दफा जन्म दे लेके जब मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकलिया है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है, इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है, भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जांदा है, इसी ची मनुख तड़प के रह जांदा है और निकलना जीवदे जी उस लई औखा हो जांदा है, कठिन हो जांदा है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है इत्थों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं, ये ठीक ही है। वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जांदा है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी, परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी, ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया है, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लेंदा है, मोह नू जित लेंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी चलांदा है, और वो जीवन दी बाजी वाकई जित लेंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लेंदा है।

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पाए, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहा, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे। वो किस तरह हो सकता है? खुश होके, प्रसन्न होके पंज मोरा खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा, तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना, कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदियां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा लिया होया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा लियाई है, इसकी गोद विच है। खादमा, तू लियाई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां, जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे चिलिपटे आया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने फिकर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया, मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगुणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उस नू चंगे नहीं लगते। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु दी शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन कर नाम दे गीत गांदियां गांदियां मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी दे सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय दे च जीवेगा डर दे च जीवेगा दुख दे च जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख दे च ते भय दे च जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरश होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखा सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जद ए ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रस्त है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह दा लड़का इधरे ऋषि भी कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के का हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उची हो गई सी ऋषि नु कह लगी पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए वो फूटी चीरी पई उड़ उड़ गए दिस जाए संसार एक वृक्ष की तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रारब्ध वसों के संजोग वसों के इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मन दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदियां करदियां थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी।

असीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरां है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। इत एक प्रभु दी लीला समुची सरां देच ये आवागम बने होया है और इत्थे सारे मुसाफर ने, असी भी मुसाफर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलते नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरक नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कौन बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, और सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नू देखते ने शुक्र करते ने परमात्मा का ईश्वर का अकाल पुरख का असीम प्रेम की दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना ताज का मो ना तहत का मो ना परिवार का मो ना संसार का मो केवल प्रेम अकाल पुरख का
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया है ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनिक माया विस्तीरने आवन्त जावन्त थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमणं महाबिकट असाध रोगणे

0: 하루 하루 하래.
1: 뭐는 그디냐? 뭐네 아들이 뭘 검소리냐 대처? 바르벌 검소리 아흥가리 아흥 매하 매하 매하 진네 지르탁 이 매랜디에 ये अहम भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है ये जन्म ते मरण दा मूल है ये जन्म ते मरण दा कारण है धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान होमे एहा जात है हमें कर्म कमाए हमें ए ही बंदना फिर जौनी पाए हमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशत चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म दा कारण बनता है जन्म मरण दा कारण बनता है और वो अहं दा बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दिच पा देंदे है बहुत लंबे गेड़ दिच पा जंदे है धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है वख वख जीवां देच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्ट रोग मच्छी देच रसना दा रोग और इसे तरीके नाल भौरे देच नासका दा रोग होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने ए रोग दुख दा कारण बनदे ने और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थां दा अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन दा अहंकार किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है जोवन धन प्रभ ताकै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल देच खुर्शीद, ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम, शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हां, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होंदा है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे।
1: इत सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन, हम बड़ कव मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान, बस यही जहालत लई फिर दिए। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। इह गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। एक अदनों न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा

परबल, अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेड़े, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू। हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण, और खलड़ी दा माण, इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, करपूर बहुप सुगंधा, परस मानक देहं मलीन, मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया, फुल्ला जैसिया पवित्र वस्तुआ मनुखी तन नाल छूंदिया स्पर्श करदिया मैलिया हो जांदियां ने। मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी, अज्ञानी एवें ही तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे, पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार।

प्यार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है, उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है, और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके, और हर एक दा माण मैं हो जावा, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। तू है, तू है, तू है। इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां, मैं हां, मैं हां। ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच, जिस दिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, मैं ना ही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं। पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू आश्रित है। तू ही है, तू ही है, तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम दा कहना है, अज रहा चनार, अज रहा चुनार, कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसदा मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकदा है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार
एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने, आप बैठ जांदा है।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंह ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने, जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहण विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसदे दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने,

0: अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जितो खुदा दा मिलाप चाहना है जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनू अज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नू होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नू मित्र बना लेंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नू उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नू जड़ चेतन सबनू अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारियां नू मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसती है एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लेंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया है दुष्टां नू भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन की ना पर ए युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदी। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल देच कुटिया बना साधना देच लीन है ते साधना सारी सिर्फ अहंकार नू मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सरा साधना विच लीन ए योगी ए संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करदे हैं। पर वो राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करां ये नजराना है ये भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र गूढ़ा मित्र बचपन दा दोस्त और वो भी साधु सी वो भी तपस्या कर रहा सी मिलन लई आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो भिक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है वी इत्थे कल्यां बैठिया तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं तीन घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे दे चले हां तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज, ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख, हरक सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दिया निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र ते, चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है, हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने, खैर जिस घर दे जाना सी गए। आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो ए जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने, सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने, पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुखत होके कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जद उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराईदा है। खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए। दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते अखां दे च रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे ने, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वालियां ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन दे दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या कर देने ज्ञानी ने। रह गई इस चोले दी गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे है। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे ने। स्वाभाविक पूछ रहे है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने। पर रह गई इना कपड़िया दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया, जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने ते उन्हां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी हंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। बड़े बुरे पुरुष आउंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपणा फिर किथे? तो मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नूं पिछे सुटदे ने। सिर्फ अपने आप नूं ही अग्गे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नू भी पिछे सुटीए, परमात्मा नू भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नू भी नहीं मन सकदा, अहंकार जीमदा है मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नू अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं। इसे नू आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है।
1: فخر بکرے نے کیا بس میرے سوا کوئی نہیں میں ہی میں ہوں بس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں

बड़ी तपस्या। वर्तमान देखी भगवान प्रगट होता है, वर्तमान देखी प्रभु की झलक मिलती है। शायद इसे वास्ते महान दार्शनिक और गुरमत दे महान ज्ञाता तत्वेता ब्रह्मज्ञानी भाई साहब भाई गुरदास जी उन्हां दा फरमान वर्तमान विच वर्तदा होवनहार सोई परवाना। गुरमुख ते वर्तमान विच जीवदा है एक क्षण और उस विच जो कुछ हो जाए हो गया है कबूल परवान, और जो हो गया कबूल है परवान है समझ लो ये जो हो गया उस तो उच्चा उठ गया, ये संसार तो उच्चा उठ गया। क्योंकि संसार विच दुख है सुख है हासे ने रोने ने जन्म है मरण है नफा है नुकसान है। संसार विच इज्जत है बेइज्जती है तंदुरुस्ती है बीमारियां ने स्वप्न है क्रूरता है। उच्चा उठ गया एकदम देच जद टिकया तो एक प्रगट होया दो मिट गए, दो मिट गए संसार मिट गया। एक प्रगट हो गया निरंकार प्रगट हो गया तो एक ते एक दम देच ही प्रगट हो गएगा। बहुते दम जो खर्च हो गए ने उना दी याद देच परमात्मा किथे, उना दमां दी याद देच ते कुछ दुख होणगे कुछ सुख होणगे। बैठा हुंदा है मनुख यादां विच कदी दुख दियां यादां कदी सुख दियां यादां कदी मिलाप दियां यादां कदी विछोड़े दियां यादां कदी संताप दियां यादां कदी मिलाप दियां यादां। इस विच जी रहा हुंदा है या फिर भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा हुंदा है। ये मिलना भी है कि नहीं, कामयाब भी होवांगा कि नहीं, नफा होवेगा कि नहीं, भविष्य की चिंता इस तरह दुबदा दे डुबोई रखती है। भविष्य की चिंता दे मनुख दुफाड़ होया बनिया रहता है। एक दम दे भविष्य मिट जाता है, एक दम दे भूतकाल मिट जाता है, एक दम दे एक प्रगट हो जाता है वो एक आनंद स्वरूप वो एक आनंदमयी। इस वास्ते गुरबाणी ने भविष्य नू जाल कह दिता है भूतकाल नू जाल कह दिता है। और भूतकाल ते भविष्य एक गुजरे हुए दिन आन वाले दिन और दिन दिन करके दिन भूतकाल बनते जा रहे ने, दिन भविष्य दिया चिंतावां दा रूप धारण करते जा रहे ने। तो समय नो नापण दा ढंग दिन ते रात इति जाल बन के मनुख नो फसा रहे ने। जाली रैण जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई तेती रस रस चोग चुगे नित फासे छूट समूड़े कवन गुणे। दस्ते सही किवें छुटेगा इस जाल तो। सतगुर की बाणी डंग भी दसती है काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे चे, सच ते एक सैकंड दे चे। और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज देच बैठे ते मरदाने नू कहिंदन मरदानिया तेनू अपने जीवन दा

बारिश हो गई। चारों पासें दा जल झरना झरनियां दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ दे उलझे है अपनी सुगंध ही भुल गया अपना स्वप्न ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया। काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव काम दे च ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक फिल्मा मैगजीन इश्तियारी दुनिया अखबारी दुनिया टीवी दी दुनिया रेडियो दी दुनिया समाजिक दुनिया राजनैतिक दुनिया हता कि धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी कारण ये जड़ा युग है एक कलाल है ही दे कोल शराब यही शराब है। मनुखा नूं किसे होर सरूर दा पता ही नहीं किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने और काम प्रबल नशा जिस दे मनुख बेसुरत मनुख बेहोश। ये गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया लिखिया नहीं गया और जद किसी ने कुछ लिखया है तो उस ग्रंथ नु धर्म ग्रंथ नहीं आख्या गया। जद कोई बोलिया है तो उन्हां बोलां नु धार्मिक बोल नहीं आख्या गया। हद हो गई जिस तो जीवन जमे है उस मन दे बोल इनू एक पासे रख दईए धर्म दा हिस्सा ना मानिए तो फिर ए ते इंज होई जिवें कह दईए जन्म ही नहीं होया या जिथों जन्म होया असी इस नूं मनदे ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है कि जम्मे काम दे चां ए लीन होवे राम दे च। यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है पर ए काम ते पदार्थां दोहां तो उच्चा उठे। पानी तो भी उच्चा उठे। कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है अचानक सता मिल गई है प्रभुता मिल गई है बड़ी तेजी दे नाल धन संपदा आई है नहीं संभाल सकया गर्क हो गया डुब गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सरोवर दे च पानी पैंदा है आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठता रहिंदा है पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति दे च अपने आप नूं तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे बड़े तीबरता दे नाल पानी वधदा जा रहा है उच्चा हो रहा है और इसी तीबरता दे नाल ओ अपने आप नूं उच्चा कर सके कठिन हो जांदा है औखा हो जांदा है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है वेच रहा है पी रहा है पिला रहा है।